ऐसे मेरा बमना को खानी वो माँ से था मना को करूँ रिका से मेरा बमना को कामी हो रिक मरे मान की सुन ले मेरा मरमा वाई या का गोली मले लावले मरमा वाई या का गोली मले लामीबा अम्मू इतना मजा को कई दान रचना है कई दे गुलुआ है कई तुम्हारी हो बजाया कई रोवा में कहाँ जाया कई हाले नारवानुं कई हाले नारवामाए किरुए सीमा का वाह पचागा किरुए नगी हुए जो मामनो वही लगा किरुए नगी हुए

0: मोन मोन बंदिया
1: मोन मोन मामा मोन मोन बंदिया
0: बंदियो कुमी
1: ओकुमी वांगोनो पेनो राजू मुसांबिकी
0: नो मुलुकोनी कबीरा नलुचनानी
1: मुनालोडा ने मुलोबा ना एमसी ओ माकी वाओ कलावेसी
0: वाला अने एमसी ओलेलो मुनानी पेला हो kipan naik makan ni aku baca kula kipan makan.
1: Kipan makan ni ho?
0: Hmm.
1: Okay.
0: Hmm.
1: Nampak kau mukma.
0: Hmm.
1: Berula wajunyu.